मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 26 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसुआ फिलिप शोपेनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वह हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

प्रार्थना का सच्चा उत्तर पाने का सबसे प्रथम मार्ग आत्मविश्वास है। परमपिता ईश्वर की आराधना हमें आत्मा और सच्चाई के साथ करनी चाहिए।

0: अनूप जलोटा के गाए इस भक्ति भजन के साथ ही आज की वंदना अब यहीं समाप्त होती है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन। आलेख और स्वर है आयशा हुसैन का।
1: सल्तनती रूहानियत के शहरियार इमाम हुसैन की सीरत को अगर तफसील में बयान किया जाए तो हजारों पृष्ठ भी कम होंगे, इसलिए इतना कहना काफी है कि हुसैन अपने नाना की फिर चलती फिरती तस्वीर थे। हुस्न जमाल मुस्तफाई का रोशन आईना थे, आपका खल्क खल्क रसूल था, आपकी सीरत सीरत रसूल थी, आपका किरदार ऐसा था कि आप गुफ्तगू फरमाते तो यूं

आप सुन रहे थे आज का चिंतन, आलेख और स्वर था आयशा हुसैन का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर है अनुराधा पौडवाल का, संगीत निर्देशक है सतीश भाटिया।

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर था अनुराधा पौडवाल का। संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि सामयिक की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
1: भेंडी के दा दीदी मन आमी सफाई जानू से ये गोटोक नगदी फसल होय से। भेंडी ने कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी और सी जिनेस मन रहे से। यथा प्रोटीन चो मात्रा 1.9% रहे से। असन तो भेंडी के सफाई बरन चो माटी ने कमोक सकूं। मांतर बालू बीती दुई माटिया भूं जहाँ जीवांश जिनेस नंगत मात्रा रहो और पानी निकल तो ठान नंगत रहो। असन भूं भेंडी का जे खुब्बे नंगत रहे से। सबले पहल भूई के दुई तिन्हार नगद जोपून लगड़ा जोपलो पीछे मारतो रहे। असन ने माटी भर भरा हो से। एचो पाछे 4 मीटर लाम और 4 मीटर ओसार कियारी और संग संगे पानी झपातो नाली मन बनाउन देतो रहे। भेंडी चो नगद उपजन काजे 2.5 एकड़ हिसाब ने गोबर खत 200 ले 250 कुंटल, नत्रजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटाश 50 किलोग्राम लगाओ लागे दे। घाम दिना चो फसल ने बुनतो पूरे गोबर खत नाले कंपोस्ट फास्फोरस और पोटास जो सफाई मात्रा संगे नत्रजन चो आधा मात्रा के देवक लागे दे। नत्रजन चो बाचलो मात्रा के बुनलो 30 दिन पाछे देवन देतो रहे। नगद उपजन काजे आम के नगद किस्म चो बीज लागे दे। ए नगद किस्म मन हो से एक मैं सांगे से। पहले उस गोटो पूसा सावनी बोलूँ से एके घाम और वर्षा दोनों समयाने मंडोक सकूं। घाम दिना 40 ले 45 दिन ने और वर्षा समयाने 60 ले 65 दिन पाछे बूटा ने फर धरुक मुरियाए से। 2.5 एकड़ ने 100 कुंटल उपजन मेरे से। दूसर हो से पूसा मखमली। एक किस्म पूसा सावनी ले खूबे उपजन दे से। उसने गोटो किस्म हो से सलेक्शन 1, सलेक्शन 2, हर वजन एक सलेक्शन 6 और 2 बल्बलों से IIHR 20, पंजाब नंबर 13, पंजाब पद्मिनी, कोयम्बटूर 1, वैशाली वधु, PNB 57, परकिंस लॉन्ग ग्रीन, चयन 7, चयन 39, 25, 29 और चयन 57, 13, 35। ये सफाई नगद की सीमन हो सी। भेंडी चो घाम दिना फसल के फरवरी मार्च महीना ने बुनुक मंडाऊक लागे दे। घाम दिना चो फसल काजे 18 से 20 किलोग्राम 2.5 एकड़ हिसाब ने बीज लागे दे और गोटोक बीजा ले दूसर बीजा के 30 सेंटीमीटर लाफी मंडातो रहे। वर्षा बीती फसल ने के जून जुलाई महीना ने मंडातो रहे। एचो काजे 10 ले 12 किलोग्राम 2.5 एकड़ हिसाब ने बीज लागे दे। बरककार ने सरलगा भेंडी फरकाजे 2 हार मंडालो फसल ने 8 ले 10 दिन चो अंतर ने मंडातो रहे। बीज के 2.5 ले 3.5 सेंटीमीटर चुखाले भूई ने मंडातो रहे। बीज चो मात्रा हो तो क्षमता 2 बरक तक रहे से। ई काजे 2 बरक पाछे जो बीज के नी मंडातो रहे। बीज के मंडातो पूरे 18 ले 24 घंटा पानी ने भिजाउन संगातो रहे और ब्रासिकाल दवाई 3 ग्राम गोठोक किलोग्राम बीज हिसाब ने उपचार करतो रहे। भूई ने नमी दखून बीज मंडा तो तुरते खिंडी पानी झपाउन देतो रहे। एचो ने बीजा भूई ने झप के जमे दे। घाम दिना फसल के 5 ले 6 दिन भीतर ने पानी झपाते रहतो रहे। लाटा बूटा के समय समय ने मिंजाते रहतो रहे और कोड़का कुसला करके रस रहे। भेंडी फसल का जे भासालीन दवाई खूबे नगत रहे से। एचो 1.5 ले 2 लीटर मात्रा 2.5 एकड़ हिसाब ने घोर बनातो रहे और बुन तो 4 दिन पूरे भूई ने छिचुन देते रहे। मंडालो 45 दिन पाछे भेंडी फर टूटातो असन हो से। 2 दिन चो अंतर ने फर टूटाते रहते रहे। घाम दिना चो फसल ने 2.5 एकड़ ने 70 कुंटल और वर्षा फसल ने 100 कुंटल हो सके। फसल ले बीज उपजन करते रहे। बल्लो ने 10 ले 12 कुंटल 2.5 एकड़ ने

0: मिरुक्सा के।
1: आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बिरले पाड़। वादक कलाकार हैं श्रीधर और साथी।

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बिरली पाड़, वादक कलाकार थे श्रीधर और साथी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारी केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। विविध भारती के कार्यक्रम दोपहर 3:00 हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, आकर्षण होंगे ईद मिलादुन नबी पर वार्ता,

कलाकार होंगे शाहिद हुसैन, हल्बी समाचार बुलेटिन, साथी होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। विभिन्न बोलियों में लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। कार्यक्रम होगा लोकमंजरी। सुबह 9:30 पर झुमझुमा कार्यक्रम में सुनिए सुबरी बघेल और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। सुबह 9:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आज की फिल्म है मधुमती। गुलशन कार्यक्रम में सुबह 10:00 हम पेश करेंगे शीर्षक फिल्मी गीत, आज का शीर्षक होगा चांद। सुबह 10:30 पर गुड़दुम कार्यक्रम में सुनिएगा मीरी राम बघेल और साथियों के गाए भत्री लोकगीत। एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम होगा सुबह 11:00। आज का कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार आनंद मिलिंद पर। सुबह 11:30 पर विभिन्न प्रदेशों के लोकगीतों का कार्यक्रम सबरस। 12:00 कार्यक्रम कला और कलाकार हल्बी बोली में। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार का प्रसारण समय होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट। दोपहर 1:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। ये वाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:30 पर सुनिएगा गोंडी समाचार बुलेटिन। शाम 7:00 होगा कार्यक्रम बस्तर के स्वर। रात्रि 8:00 कुड़ई फूल कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुखमती और साथियों के गाए भत्री लोकगीत। रात्रि 8:00 होगा कार्यक्रम पिलामन का जिगोट हल्बी बोली में, प्रस्तुति होगी गोपाल पोयाम की। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से, शासकीय योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम उवाट का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 पर। विषय होगा किसान नीति, प्रस्तुति होगी लखमूराम मरकाम की। रात्रि 10:00 हल्बी परिचर्चा, विषय होगा बस्तर की लोक संस्कृति, प्रतिभागी होंगे रुद्र नारायण पानीग्राही और विक्रम सोनी। कार्यक्रम का संचालन होगा बलबीर सिंह कच्छ का। सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, आकर्षण होंगे। आज इसमें आप सुनेंगे शाहिद हुसैन की वार्ता ईद मिलादुन नबी, हल्बी समाचार बुलेटिन, साथ ही होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। लोक मंजरी कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सुबह 8:30 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में नौ राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की छह प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में तीन नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त की मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में नेपस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। इसमें 382वीं रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि वह केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करेगा। केंद्र सरकार ने इस याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

नमस्कार। जगदलपुर सुनने वाले सभी श्रोताओं को शिबा सिंह का स्नेहिल अभिवादन और ईद मिलादुन्नबी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम में ईद मिलादुन्नबी पर शाहिद हुसैन की वार्ता, हल्बी समाचार बुलेटिन, साथ ही फिल्मी गीतों की मधुरिमा।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: श्रोताओं, ईद मिलादुन्नबी इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। यह इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने यानी रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है, जिसे बारावकावत भी कहते हैं। मिलाद का अर्थ, अरबी भाषा का ये एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जन्म। मिलादुन नबी का मतलब पैगंबर मोहम्मद का जन्म है। संदेश यह है कि यह दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेशों, प्रेम, करुणा, भाईचारे और मानवता के संदेश को याद करने का अवसर है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर जुलूसे मोहम्मदी निकालते हैं, हाथों में झंडे और दिलों में आशीष, दरूद व सलाम के साथ पैगंबर की शान में प्रशंसा के गीत पढ़ते हैं। लोग मस्जिदों और घरों में विशेष इबादत करते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत आदर करते हैं और स्वैच्छिक नफल नमाज अदा करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है और दया या कहें सदका दान दिया जाता है। घरों और मस्जिदों को खूबसूरत रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। ये त्यौहार रबीउल अव्वल की पहली तारीख से लेकर 12वीं तारीख तक बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाता है।

0: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, कार्यक्रम के क्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं शाहिद हुसैन की वार्ता ईद मिलादुन्नबी।
1: श्रोताओं, ईद मिलादुन्नबी इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने यानी रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को ये पवित्र त्यौहार मनाया जाता है।

आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हल्बी समाचार बुलेटिन।

जुहार, ये आकाशवाणी जगदलपुर आए हल्बी ने समाचार बुलेटिन संगे मैं हितप्रीता ठाकुर। पहल आजीचो मूर खबर मन, राष्ट्रीय खेल दिवस मौका ने काली राष्ट्रव्यापी खेलो इंडिया संवाद चो उदिम करतोर हुए दी। प्रधानमंत्री वर्चुअल वाट ले 8 लाख जुआन लोग मन संगे कर दे गोट बात। छत्तीसगढ़ ने एतो बरक मार्च महीना तक 5 लाख ठान घर मन ने सोलर पैनल लगा तो लक्ष्य होली राखतोर। छत्तीसगढ़ ने अदाय तृतीय श्रेणी चो पद मन ने सीधी भर्ती ने पूर्व अग्निवीर मन के 10% आरक्षण मिले दे। साइबर अपराध लागू लोग मन के चेतता तो काजे, छत्तीसगढ़ पुलिस बाट ले चला तो होय से साइबर जागृति अभियान। अदाय समाचार सरसरा, महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद चो जयंती अरु राष्ट्रीय खेल दिवस चो मौका ने काली 27 अगस्त की राष्ट्रव्यापी खेलो इंडिया संवाद चो उदिम करतोर हुए दे। ए मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उवाट ले देशभर चो 1600 ठान भीने भीने ठान मन ने रलो 8 लाख ले अधिक जुवान पिला मन संगे गोट बात कर दी। माय भारत चो राज्य निदेशक अर्पित तिवारी रायपुर ने पत्रकार वार्ता की संबोधित करतो बेरा सांगला की केंद्रीय युवा कार्यक्रम आरु खेल मंत्रालय चो माय भारत बाटली मुख्य कार्यक्रम 29 अगस्त चो ठाने अदाय 27 अगस्त के उदिम करतो होए दे। ए महाअभियान चो विषय थीम युवा भागीदारी खेल विकास अरु राष्ट्र निर्माण राखतोर होली से। ये कार्यक्रम देश चो

ओटो गोटोक जिला चो दुई दुई ठान महाविद्यालय मन ने आयोजित करतुर होय दी जे चोले देश चो भिने भिने ठान परगन मन चो जुआन पिला मन के गोटोक कॉमन नेशनल प्लेटफॉर्म ले जोड़तोर हो सको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर के नई दिल्ली चो विज्ञान भवन ने 48 जान शिक्षक बल्लो ने पढ़ातो लोगमन के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दे दे। एमन ने छत्तीसगढ़ चो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला चो शासकीय प्राथमिक शाला खिचरी ने पदने रलो पढ़ातो शिक्षिका सुनीता यादव बले शामिल आसत। सुनीता यादव प्राथमिक शिक्षा चो क्षेत्र ने खूबे नंगत काम करुन पीला मन के पढ़ातो काजे सिरजाला अरु नवाचार उवाट करुन शिक्षा के प्रभावी बनातो अरु पढ़तो पीला मंचो गुलाय बाटले बल्ले सर्वांगीण विकास का जे खुबे नंगत सांगतो असन गोठियातो असन कोसित मन करला। केंद्र सरकार गेलो 21 अगस्त के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागून उद्यमिता काजे राष्ट्रीय अभियान चो दूसर चरण चो मुरियानी करला। ये अभियान 21 नवंबर तक 3 महीना काजे आउ चले दे। ग्रामीण विकास मंत्रालय सांगली की ये अभियान ले गांवरिया मेहरार मंचो उद्यमिता बल्ले व्यापार उवाट के और अधिक सकत बल अरु 6 करोड़ झान लखपति दीदी मन बनातो चो लक्ष्य ने योगदान मिरे दे। छत्तीसगढ़ ने एतो साल मार्च तक 5 लाख ठान घर मन ने सोलर पैनल लगातो लक्ष्य धरतो होली से। ये गोट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गेलो 23 अगस्त के रायपुर ने छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन बाटले होतो बीती दुई दिनिया संवाद कार्यक्रम चो समापन समारोह ने बल्ला। हुनमन बल्ला की राज्य सरकार चो लक्ष्य छत्तीसगढ़ की ऊर्जा चो क्षेत्र ने देश चो पहल राज मन चो ठान ने थापना करतो राय। श्री साय सांगला के राज ने अदाय तक लमसम 95,000 ठान घर मंचो छानी ने सोलर पैनल चो थापना करतो होली से। मुख्यमंत्री सांगला की सौर ऊर्जा चो बिगसलो ने सोजे बिजली उत्पादन होए दे असन नुहाए पहाड़ ले ये रोजगार और स्वरोजगार चो नवा मौका बले उपजातो काम करे से। राज ने महिला स्व सहायता समूह मंचो बहिन मन अदाय सोलर वेंडर चो रूप ने आगे एसत और हितग्राही मंचो घर मन ने सोलर संयंत्र चो थापना कर सोत। छत्तीसगढ़ सरकार आगे चो अग्निवीर मन का जे सरकारी नौकरी चो बांटने हलहला करतो बीती बड़े फैसला धर ली से। राज्य ने अदाय तृतीय वर्ग श्रेणी चो पदमन ने सीधी भर्ती ले आगे चो अग्निवीर मन के 10% आरक्षण नियम चो 2026 चो नोटिफिकेशन जारी करुन दिलोर आसे। 4 साल चो सेवा पूरा कर लो अग्निवीर के ये व्यवस्था चो नियम ने ए दे। उप मुख्यमंत्री और उप पंचायत मंत्री विजय शर्मा बल्ला की गेलो 2.5 बरक ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागून 11 लाख ले अधिक घर मन बनातोर होली से। 23 अगस्त के रायपुर ने पत्रकार मन संगे गोट बात करतो बेरा उप मुख्यमंत्री बल्ला की एबे राज ने लमसम 4 लाख ठान आवास बने से आरु एके झपके संपूर्ण करतो काजे विभाग बाटले कोसित करतो होय से। श्री शर्मा बल्ला की आगे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागून गोट गोठियाओ चाहे सत तो राज्य सरकार एचो काजे तैयार आसे। साइबर अपराध मन लागून लोग मन के चेतातो काजे छत्तीसगढ़ पुलिस 15 अगस्त ले साइबर जागृति अभियान मूर कर ली से। ये अभियान जो दूसर हफ्ता 23 अगस्त ले मूर हो उनके ली से। सहायक पुलिस महानिरीक्षक रोहित झा सांगला के अभियान मोह का बैंक मन एटीएम परिसर मन वित्तीय संस्था मन आरु दूसर ठान मन ने लोग मन के यूपीआई फ्रॉड फर्जी फोन नहाले मैसेज ले ठगी क्यूआर कोड आरु ओटीपी संग चो ठगी चो गोट मन काजे चेतातोर हो से। हुनमन सांगला की साइबर धोखाधड़ी चो हाल ने 1930 नंबर ने आप लो शिकायत दर्ज करतो काजे बले जानकारी देतोर होए से। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चले दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो जन्मदिन मौका ने भारतीय जनता पार्टी 1 महीना तक राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाए दे। ये अभियान चो मूल उद्देश्य जन सेवा काजे श्री मोदी चो प्रतिबद्धता बल्ले संकल्प कट कर लो गोठ मन के पूरे आंतोर लोग मन खास लागून जुआन मन के सेवा संचो काम मन ने शामिल हो तो काजे प्रोत्साहित बल्ले सहरा तोर आए। नई दिल्ली ने पार्टी चो राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े सांगला की पार्टी ये अभियान लागून भीने भीने काम कार्यक्रम मन चो उदिम करे दे। श्री तावड़े बल्ला की ये अभियान लागून पार्टी कार्यकर्ता देश भर चो 14 लाख ले अधिक आंगनबाड़ी केंद्र मन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के मान कर तो काजे कार्यक्रम उदिम कर दे। इथाने जुआन मन चो बल्ले भागीदारी मन ने खास बल दे तोर हो दे। हुनमन ब्लॉक स्तर ने 15 दिन चो सेवा सेतु अभियान चो बले घोषणा करला। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR आपलो बाटले खुदे बलून दिली से कि H1N1 चो काई नया रूप चो जांच पड़ताल एबे नाजुन होली से आरु डर भय चो काई जरूरत निहाय। एबे चो समया ने धरतो बीमार इन्फ्लुएंजा नवा नुहाय। ICMR चो वरिष्ठ वैज्ञानिक मन चो हिसाब ने ये बरक 2025 ले दखा दिली से आरु आसे। ICMR चो बल्लो हिसाब ने H1N1 संगे लेहरा पानी संग चो बतर पड़नी इन्फ्लुएंजा जुगे सीमिता से एचो सामान्य लक्षण मन ने जर खोखली मुंड दुखा और देह पाए चो अकड़तोर
आरू जुगे लागुन नगद दखा राखा होले लोग झपके उजरुन बले जाय सोत। परिषद बल्ली से कि नानी पीला सियान और बीमार लोग मन के ये इन्फ्लुएंजा ले निस हो सके अनगर ये लक्षण चिंता करतो असन दखा दिले डॉक्टर चो सलाह धरतो राय। बस्तर संभाग चो आयुक्त डोमन सिंह और वी बी जी रामजी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चो आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा सोमवार 24 अगस्त के जगदलपुर ने बस्तर संभाग ने होतो बीती वी बी जी रामजी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चो काम मंचो समीक्षा करला। बसका ने योजना मंचो बाढ़ती संगेचे मानव दिवस सृजन अधोसंरचना निर्माण अरु ठेबलो काम मन की झपके संपूर्ण करतो लागुन अधिकारी मन के दिशा निर्देश दिला। संभाग आयुक्त श्री सिंह अधिकारी मन के बल्ला की योजना मंचो प्रभावी काम करातो संगे अधोसंरचना अरु विकास काम मन ने गुणवत्ता चो खास ख्याल राखतो हो हुनमन आगर ले आगर मानव दिवस बनातो काजे जोर दिला। बस्तर संभाग चो कमिश्नर डोमन सिंह बीजापुर रलो मोहका जिला स्तरीय अधिकारी मंचो समीक्षा बसका धरुन जिला ने चलतो बीती शासकीय योजना मन और विकास काम मंचो बाढ़ती चो गोट गोठियाला। हुनमन बस्तर मुन्ने उवाट लागून 100% सेचुरेशन सुनिश्चित करतो आरु जमाय पात्र हितग्राही चो पोर्टल ने एंट्री करतो निर्देश दिला। श्री सिंह बल्ला की शासन चो योजना मन आरु सेवा मंचो लाभ समाज चो कोंटी साकड़ी चो लोग मन तक अमर तो राय हुनमन जमाय पात्र हितग्राही मन के राशन कार्ड आयुष्मान कार्ड जाति प्रमाण पत्र वी बी जी रामजी कार्ड श्रम कार्ड प्रधानमंत्री आवास संगे बस्तर मुन्ने चो भित्रे गोंडरानी चीना बाना सफाई 21 ठान सेवा मन ले लाभ दिया तो निर्देश दिला। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मोहका दंतेवाड़ा चो जिला विज्ञान केंद्र ने पहला डिजिटल भ्रमणशील तारा मंडल चो लाइव शो चो उद्यम करतो होली। डिजिटल डोम चो भीतरे दर्शक दक्तो लोग मन के अंतरिक्ष सौर मंडल ग्रह मन अरु तारा मन चो अचरित होतो असन अरु सायका पूरे इलो असन अनुभव कराला। पड़तो पीला मन डोम चो ब्रह्मांड संगे मिसलो कय अचरित करतो असन जानकारी पावला। पीला मन सांगला की डिजिटल डोम ने हुनमन अंतरिक्ष के लगे ले दक्षोत हुताय आसत असन लागली। कैक पीला मन सौर मंडल धरतनी अरु तारा मन संगे भिड़लो सुवाल मन बले पूछला। पड़तो पीला मन माय बाप पीला पोसिया मन अरु आम नागरिक मन काजे दक्तो काजे ये सुविधा फोकहानी रली। ये उद्यम चो उद्देश्य पड़तो पीला मन आम नागरिक मन के खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष चो अचरित करतो असन संसार के पूरे पाड़ून नगद जानकारी करातो रली। कोंडागांव जिला चो ग्राम कोनगुड़ ने नीति आयोग बाटले आकांक्षा ग्रामीण कौशल और नवाचार केंद्र विकसित करतो होइसी। फरसगांव विकास खंड ने थापना करलो ये केंद्र उवाटले हर साल लमसम 1,500 जुआन मन के कौशल प्रशिक्षण देतोर अरु 300 ले अधिक रोजगार उपजातो लक्ष्य संगाला से। कांकेर सांसद भोजराज नाग अरु विधायक नीलकंठ टेकाम 20 अगस्त के केंद्र ने करतो बीती काम मंचो जांच करुन व्यवस्था मन अरु रोजगार उपजातो असन उवाट मंचो जानकारी धरला। एमो का हुनमन केंद्र भ्रमण काजे इलो पुनर्वासित लोग मन ले बले चर्चा करला अरु हुनमन के रोजगार संचो मिसलो मुख्य धारा ने आगे बढ़तो काजे सहराला। गाजर घास चो निस नुकसान ले बचाओ अरु एचो मरलातो काजे बीजापुर जिला ने कृषि विज्ञान केंद्र बाटले 16 ले 22 अगस्त तक गाजर घास जागरूकता एवं उन्मूलन सप्ताह मनातो होली। एमो का स्कूल मन बेड़ा मन अरु गांवरिया ठान परगन मन चोपड़तो पीला मन अरु कास्तकार मन के गाजर घास ले होतो बीती नुकसान अरु एचो सुरक्षित नियंत्रण बल्ले हिसाब ने मरला ने उवाट चो जानकारी दिला। ये अभियान मोहका केंद्रीय विद्यालय स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल शासकीय कन्या विद्यालय ज्ञानगुड़ी और पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय संगे भीने भीने स्कूल मन ने जागरूकता कार्यक्रम चो उदिम करुन पड़तो पीला मन के गाजर घास चो चीना बाना करुन समय रते रते गुचातो काजे सुतूर चो गोट सांगला। हुताय जिला चो कोतापाल मुसालूर धनौरा पापनपाल अरु दुगेली संगे गांवरिया ठान परगन मन निवले कास्तकार मन के गाजर घास चो निदान करतो जानकारी देतो होली। फूल एतो पहिल हाथे दस्तान अरु टोंडे मास्क पिंधुन गाजर घास के जड़ संगे निकरातो सुरक्षित विधि चो व्यवहारिक बल्ले उवाट ले दखानी हिसाब ने करुन दखातो होली। कास्तकार मन के जैविक अरु रासायनिक नियंत्रण चो उपाय मन संगे कृषि भूमि ने अनुशंसित शाकनाशी मन चो उपयोग अरु जैविक नियंत्रण काजे मैक्सिकन बीटल चो जानकारी बल्ले देतो होली। सुकमा जिला चो थाना भेजी ठान परगन चो ग्राम भंडार पदर ने रांचो सुरक्षा बल मन माओवादी मन बाटले डंप कर लो हथियार गोला बारूद अरु विस्फोटक सज मन धरली से। ए मन ने SLR राइफल भरमार बंदूक मस्केट 6 ठान BGL लांचर संगे कुल 23 ठान हथियार शामिल आसे। एके छांडे और फिर 492 ठान जीवत कारतूस 240 ठान जिलेटिन स्टिक अरु 18 किलोग्राम गन पाउडर संगे दूसर विस्फोटक सच सामान बले धरतो पुलिस से। पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर सांगला की ये कार्यवाही आत्मसमर्पित नक्सली मन ले मिरलो जानकारी चो आधार ने करतो होली से।
सुकमा जिल्ला चो धुरिया ठान रान परगन मन ने

0: मोबाइल नेटवर्क चो सुविधा अमरातो के गांवरिया लोगमन के खूबे सहारा होली से जिला प्रशासन चो कोसित ने गोंडी गुड़ा सुन्ना पेंटा दुंगा बाबू और टेटरई जसन कोंटी साकड़ी चो गांव मन ने मोबाइल नेटवर्क अमरली से अदा गांवरिया गांव मन ने चे मोबाइल ले आपलो लोग बाग संगे आराम से अमरुक सकत हुताय पढ़तो पीला मन के ऑनलाइन पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा मन चो सच तैयारी ने साका सहायता मिले से लोग मन के डिजिटल उवाटले सरकारी योजना मन बैंकिंग आरु दूसर सेवा मन चो जानकारी बले मिरुक मुरियाली से आपात स्थिति ने स्वास्थ्य सेवा मन एम्बुलेंस आरु प्रशासन ले झटाक नाय मिर्तो बीती सफाय सुविधा मन बले सरसरा होली से। छत्तीसगढ़ ले हज काजे आवेदन करलो प्रतीक्षा सूची चो 82 जन आवेदक मन चो नाव तय होली से राज्य हज कमेटी चो चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग सांगला की हज कमेटी ऑफ इंडिया ले मिरलो सूचना हिसाब ने प्रतीक्षा सूची ने क्रमांक 1 से 82 तक चो आवेदक मन चो चयन होली से चयन होलो हज यात्री मन के पहल किस्त चो रूप ने प्रति हाजी 1,52,300 रूपया 30 अगस्त तक जमा करो पड़े दे। सरासरी दाय मूर खबर मन एक हार फेर राष्ट्रीय खेल दिवस मौका ने काली राष्ट्रव्यापी खेलो इंडिया संवाद चो उदिम करतोर हुए दी प्रधानमंत्री वर्चुअल वाटले 8 लाख जुआन लोग मन संगे कर दे गोट बात। छत्तीसगढ़ ने एतो बरक मार्च महीना तक 5 लाख ठान घर मन ने सोलर पैनल लगा तो लक्ष्य होली राखतोर। छत्तीसगढ़ ने अदाय तृतीय श्रेणी चो पद मन ने सीधी भर्ती ने पूर्व अग्निवीर मन के 10% आरक्षण मिले दे साइबर अपराध लागून लोग मन के चेतता तो काजे छत्तीसगढ़ पुलिस बाटले चलातर होय से साइबर जागृति अभियान इचे संगे हल्बी समाचार बुलेटिन चो ये अंक इथाय सरे से जुहार।
1: अभी आप सुन रहे थे हल्बी समाचार बुलेटिन।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: और अब पेश है मधुरिमा। चांद की चांदनी और तेरी हंसी, चांद की चांदनी और तेरी हंसी, दोनों ने दिल को दी है खुशी। तेरी यादों में खो जाता हूं मैं, तेरी यादों में खो जाता हूँ मैं, चांदनी रातों में तेरे बिन तन्हा हूँ मैं।

चांद को तारों का सहारा मिला, चांद को तारों का सहारा मिला। हम खुद को खुशकिस्मत समझते हैं, हमें आपका साथ सारी जिंदगी का मिला।

जिस चांद के हजारों हो चाहने वाले, जिस चांद के हजारों हो चाहने वाले, वो क्या समझेगा एक सितारे की कमी को। हर एक रात को महताब देखने के लिए, हर एक रात को महताब देखने के लिए, मैं जागता हूँ तेरा ख्वाब तुझे देखने के लिए।

मधुरिमा में आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वे फिल्में थीं बरसात की एक रात, चौदहवीं का चांद और हिमालय की गोद में। मधुरिमा के इन्हीं गीतों के साथ ही आज के नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम से मुझे यानी शिबा सिंह को दें अनुमति नमस्कार। और एक बार श्रोताओं फिर से आप सभी श्रोताओं को ईद मिलादुन नबी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।

आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।

0: कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
3: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये 6वीं बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के

0: गठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमरीका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमरीकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम में

0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद ए मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at Pragati meeting. Union Home Minister Amit Shah sets 1-year deadline for 100% implementation of 3 new criminal laws. Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agree to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Milad-un-Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today. Keralites across the globe celebrating Thiruvonam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. More from our correspondent.
3: The Prime Minister called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage.

अभी आप सुन रहे थे रामू बिसाई का गाया भत्री लोकगीत। अब लीजिए सुनिए बलबीर सिंह कच्छ और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकमंजरी कार्यक्रम में विभिन्न बोलियों में लोकगीत। अब लीजिए सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं विभिन्न बोलियों में लोकगीत कार्यक्रम लोकमंजरी में। आप सुन रहे हैं रामनाथ कश्यप और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

लोक मंजरी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विभिन्न बोलियों में लोकगीत। मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम झुमझुमा, इसमें सुनिए आज सुबरी बघेल और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झुमझुमा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे सुबरी बघेल और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज की फिल्म है मधुमती। फिल्म मधुमती, जो कि सन 1958 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। कार्यक्रम से जुड़ी और भी बातें करेंगे हम। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत। इस गीत को स्वर दिया है मुकेश ने।

सन 1958 में प्रदर्शित फिल्म मधुमति। फिल्म के निर्देशक बिमल रॉय, फिल्म की कहानी लिखी ऋत्विक घटक और राजेंद्र सिंह बेदी ने। फिल्म की कहानी ऋत्विक घटक ने लिखी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को भी स्वर दिया है मुकेश ने।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में कार्यक्रम का ये गीत। श्रोताओं, सन 1958 में प्रदर्शित मधुमती फिल्म के कलाकार दिलीप कुमार, वैजयंती माला, जॉनी वॉकर, प्राण और जयंत। इस फिल्म में वैजयंती माला ने ट्रिपल भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के कई रीमेक फिल्में भी बनी, जैसे कुदरत, 20 साल बाद और ओम शांति ओम। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

फिल्म मधुमति के गीतों को अपनी आवाजें दी लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफी और मन्ना डे ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को भी स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

0: भारतीय मानक ब्यूरो, स्टैंडर्ड है तो सही है।
1: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सन 1958 में प्रदर्शित फिल्म मधुमति के गीत। फिल्म मधुमति ने रिकॉर्ड 19 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे, जो उस समय एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था। इसके सभी गाने सुपरहिट रहे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

फिल्म मधुमति के गीतों को लिखा शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया सलील चौधरी ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से दे रहे थे। इस समय सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: 9:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहायक ग्रेड 3 के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति दे दी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार से प्रदेश में वर्षा में कमी आ सकती है। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहायक ग्रेड 3 के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति दे दी है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित जिला कलेक्टरों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। वित्त विभाग से भी इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है। शासन ने निर्धारित आरक्षण और नियमों का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने नगरीय निकायों के पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि की है। सातवें वेतनमान के पेंशनरों को अब 58% और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257% की दर से महंगाई राहत दिया जाएगा। पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलेगा। राजधानी रायपुर में कल स्कूल शिक्षा विभाग की एक दिवसीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की। इस बैठक में प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के साथ ही विभागीय अधिकारी और सचिव शामिल हुए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि स्कूलों में शिक्षक केवल ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही न आए बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में आने वाले समय में छात्राओं के लिए 8,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 5,000 नए शिक्षकों की भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है। 20 सितंबर को होने वाली सिविल जज भर्ती परीक्षा 2026 को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को

0: न्यायिक अधिकारियों के रिटायरमेंट की उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष या अंतरिम रूप से 61 वर्ष करने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। इस वजह से ये परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है और विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में आज पूरे प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहने की संभावना है। आज राज्य के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने तथा गरज चमक के साथ वज्रपात होने की चेतावनी दी गई है। कल मंगलवार को राज्य के बस्तर, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। बड़े बचेली में 17, राजिम में 11, बीजापुर में 9 सेंटीमीटर और मंदिर हसौद में 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार से वर्षा में कमी आ सकती है। कल छत्तीसगढ़ शिक्षा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षकों ने रैली निकाली। इन शिक्षकों ने अपनी 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इनमें टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करना, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और वेतन विसंगति दूर करने की मांग शामिल है। रैली के पश्चात इन शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहायक ग्रेड 3 के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति दे दी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार से प्रदेश में वर्षा में कमी आ सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलशन, इसमें सुनिए चांद शीर्षक पर हिंदी फिल्मी गीत। पहला गीत हमने लिया है कुमार शानू की आवाज में। फिल्म है ये है मुंबई मेरी जान। इंदिवर के शब्दों को सुरों में ढाला है जतिन ललित ने।

आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए फिल्म आओ प्यार करें का ये गीत। इस गीत को स्वर दिया है कुमार शानू ने।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं गुलशन कार्यक्रम में चांद शीर्षक पर फिल्मी गीत। कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। गीतकार कातिल शिफाई, संगीत है अन्नू मलिक का। इस गीत को हमने लिया है फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई से।

0: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
1: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
0: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को

0: आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से गुलशन कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं चांद शीर्षक पर फिल्मी गीत दामिनी। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के शब्दों को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म जख्म से स्वर दिया है अलका याग्निक ने। आनंद बख्शी के शब्दों को संगीत से सजाया है MM क्रीम ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलशन। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे चांद शीर्षक पर हिंदी फिल्मी गीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौपहार 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसान वाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
2: वेव्स ओटीटी ऐप, यहाँ आपको मिलेगा मूवी सीरीज, नए नए शोज, लाइव टीवी चैनल्स और वीडियो ऑन डिमांड। मन हो तो लाइव रेडियो चैनल सुनिए, मूड हो तो गेमिंग का मजा लीजिए और हाँ, शॉपिंग भी इस ऐप पर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं। जी हाँ, वेव्स पर बहुत सारे कंटेंट्स आप बिल्कुल फ्री में देख और सुन सकते हैं, वो भी 12 से ज्यादा भाषाओं में। तो आज ही अपने फोन में डाउनलोड कीजिए वेव्स ओटीटी ऐप सीधे गूगल प्ले स्टोर से। वेव्स, एंटरटेनमेंट की नई लहर अब आपके फोन पर।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड़दुम। आज इसमें सुनिए मिरीराम बघेल और साथियों के गाए भत्री लोकगीत।

0: मुंडी जुलाई जुलाई नाचे लो जाती जुड़ूंगा जो पालो
1: ओदर लाटे अंड काचे गीला गाचे चे गीला गाचे लो मुंडी ऊंचाई ऊंचाई नाचे लो जाती चारिया नावेलो
0: सुरु जापो बाजे मेला ही काजे लो बोड़े जापो बाजे रोजे लो जाती जुड़ूंगा जो पालो
1: सुरु जापो बाजे मेला ही काजे मेला ही काजे लो बोड़े जापो बाजे रोजे लो जाती चारिया नावेलो
0: सारे लाडोरी लाडोरा काजे लो चनागे नी देवू रोजे लो जाती राय कम बीड़ा जो तो न करालो
1: असलो लाडोरा लाडोरी काजे ओ चना गेनी देवू रोजे लो जाती चारिया नावेलो
0: टीप बहुसरो टीपनी गरी लो बूंदा बहुसरो।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुरुदुम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मिरीराम बघेल और साथियों के गाए भत्री लोकगीत।

0: धंधो माकड़ी यादर सुता जांगर मऊस के काटी कुवाई ले तिरी के नाई भी सासा राना वेल कारे रानी मच संगे खेला चकड़ा लगी जाए कारे मीठा पान के धंधो टंडे गो बाबे खोदरा खोदरा गाले
1: राजा रो पाई को जमर दूत माकड़ी हाथ रसुत रे धंधो माकड़ी हाथ रसुत जंगर मऊस काटी कु आईले तिरी के नाई भी सास रे धंधो तिरी के नाई भी सास कड़ा लगी जाए करे या कि जुमु जामो जुमुरा लागला जबे करे
0: तिरी की तेजी न मन तू वीर रे तिरी की न बोलो मर रे धंधो तिरी की न बोलो मर तिरी की तेजी ले गोविंद चंद्र रे तेबे तू हे बुआ मर राना वेल कारे रानी चलो डुडू खेलो चकड़ लग जाए करे तले भेंडा पाना ऊपरे दो तीता तीरी पीतल मंगरी टुंगु चाटू चांगो बाजा हाजी तो आज धरा दंद जोर पानी मन काली के खाए बाज बाजा रोना वेल कारे रानी मच संगे खेलो चकड़ लग जाए करे बाजुआ ठाने तो का पाले चीची मोर चिड़ई सिका तो राया बुआ कुकुड़ा दिखा का तो के दे घर राका रोना वेल कारे रानी चलो डुडू खेलो चकड़ा लग जाए करे आखी झुमझा मझुमरा लागली जो अवे घरे पानी भी रो बोरो बालू तो कुमार पानी भी रो बोरो बना रे दंदो पानी भी रो बोरो बना आकाश भुवने मेड़ो बांधु आए पकी नहीं लारू डेना

रोसिला पानी रे दंद बाटे बरोसिला पानी टिकरा कोसमी बरोसिला पानी चेगी गला बरगनी चेगिला माछ के मुडे बार बारे ना पोजानी बेलो जानी रे दंद ना पोजानी बेलो जानी रोना बेल का सुंदर चलो डुडू केलो चकड़ा लगी जाए को अरे साढ़े छये सली चाउरो नापोला बाबूला लगरे आसा बोलो बाके आसो तेर लुकाय बाटे बरोसिला पानी रोना बेल का सुंदर मच संगे खेलो चकड़ लगी जाए को अरे उठन पाउन मधरुन जाते नानिया मा वाले गा गा मोर गा चो मलिका गाते बेसुनी दकु पालिया उड़िया पदो पीटी गले का।

बाटो बाटो जाए बाटो दामुना बाटो बाटो जाए बाटो दामुना टेंडो कर सियावा ना सुजुन बोला ले की मोन कौन सा बदुन ताली बाजे रन जाना डोंगरे बुनिलु डोंगरो दानो डोंगरे बुनिलु डोंगरो दानो पाली पुकाहिलु सोनो सुजुनो कोनो गाइन मोनो कौन सा बदुनो ताली बाजे रन जाना सोनो पिंडवा काजे जीती गलाया सोनो पिंडवा काजे जीती गलाया कली राजो टोकी मोनो सुजुनो बोला ले की मोनो कौन सा बदुनो ताली बाजे रन जाना ये देते की दरा विचार करा ये देते की दरा विचार करा हाजिर गनी के दरा सुजुन बोला ले की मुन कौन सा बदुन ताली बाजे रन जाना आशा बोलो बाके आसो तेरुलू आशा बोलो बाके आसो तेरुलू बाटे बुरो सिला पानी सुजुन कौन गाइन मुन कौन सा बदुन ताली बाजे रन जाना उड़ीला गोरिया बसिला माले मालर गोरिया झूले सुजुन कौन गाइन मुन कौन सा बदुन ताली बाजे रन जाना गलार गलर करे बाली बजारे गलार गलर करे बाली बजारे डुरु का कंदीला जारे सुजुन बोला ले की मुन कौन सा बदुन ताली बाजे रन जाना ये देते की दरा विचार करा ये देते की दरा विचार करा आजीर गनी के दरा सुजुन लाई दरा दरा दा दरा दरा सियोनी गले वो दरा सुजुन बोला ले की मुन कौन सा वो दुन ताली बाजे रन आमार तुंग गुड़ा ये लगे नहीं आमार तुंग गुड़ा ये लगे नहीं डंगरी उतरा निगाई सुजुन बोला ले की मुन कौन सा वो दुन ताली बाजे रन जाना गाहा गाहा तेबे गाहा कोमोली गाहा तेबे सुनी दकु सुजुन बोला ले की मुन कौन सा वो दुन ताली बाजे रन जाना टेकी दर पुन बांधिया सुन टेका दर पुन बांधिया सुन हिटी गलार न बोन सुजुन कौन गाइन मुन कौन सा वो दुन ताली बाजे रन जाना लगे टाना गुड़ी जगू न चूला लगे टाना गुड़ी जगू न चूला पाऊ आई पोको न डेला सुजुन बोला ले की मुन कौन सा बदुन ताली बाजे रन जाना ये देल यालो भी दर्प न डबी ये देल यालो भी दर्प न डबी जेने गले तेने ने भी सुजुन बोला ले की मुन कौन सा बदुन ताली बाजे रन जाना पांचो पोड़ी गले पोचासो देवी पांचो पोड़ी गले पोचासो देवी हाथ के दरी गरे ने भी सुजुन बोला ले की मुन कौन सा बदुन ताली बाजे रन जाना तो कहने बाका जे अंगुर वाचे तो कहने बाका जे अंगुर वाचे मामा के संग लिया चे सुजुन बोला ले की मुन कौन सा बदुन ताली बाजे रन जाना तोर मन आचे के बे के बे तोर मन आचे के बे के बे मोर मन आचे ये बे सुजुन कौन गाइन मुन कौन सा बदुन ताली बाजे रन जाना गच के मारी लुती नी टेंगिया गच के मारी लुती नी टेंगिया गच डुले के सरिया सुजुन कौन गाइन मुन कौन सा बदुन ताली बाजे रन जाना तोमार गुरु दादा नीली रंगिया तोमार गुरु दादा नीली रंगिया गरे गले सलिया सुजुन बोला ले की मुन कौन सा बदुन ताली बाजे रन जाना ये दे उदान बोके चिली पार के ये दे उदान बोके चिली पार के दादा काजे ने भूतो के सुजुन बोला ले

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

क्या शानदार गीत था। ये गीत केवल एक फिल्म गीत नहीं रहा, बल्कि युवाओं की आकांक्षाओं और माता पिता के सपनों की आवाज बन गया। और इस गीत के संगीत ने आनंद मिलिंद को हिंदी फिल्म संगीत के बड़े मंच पर मजबूती से स्थापित किया। इस फिल्म यानी कयामत से कयामत तक के लिए आनंद मिलिंद को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। आनंद और मिलिंद प्रसिद्ध संगीतकार चित्रगुप्त के पुत्र हैं। चित्रगुप्त ने हिंदी सिनेमा को अनेक यादगार गीत दिए थे। संगीतमय वातावरण में पले बड़े होने के कारण संगीत उनके लिए केवल पेशा नहीं था, संगीत उनके लिए घर की संस्कृति का हिस्सा था। पिता से मिली संगीत की विरासत को दोनों भाइयों ने अपनी शैली और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ाया।

0: भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड है तो सही है।
1: आनंद मिलिंद ने 1980 के दशक में फिल्म संगीत की दुनिया में कदम रखा। शुरुआती दौर में उन्हें संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने लगातार काम किया। धीरे धीरे उनकी पहचान बनी और फिर आया वो दौर जिसने उनकी किस्मत बदल दी। कयामत से कयामत तक के बाद इनके पास फिल्मों की कतार लगने लगी और फिर आया एक और बड़ा संगीत सफर। आइए सुनते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
2: सस्ता नहीं सही चाहिए, क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, सेफ्टी में नो सरप्राइज, डोंट जस्ट बाय, रेज योर स्टैंडर्ड, अपनाओ इंडियन स्टैंडर्ड।
3: जी हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो भरोसा है, और इस भरोसे की पहचान है BIS क्वालिटी मार्क्स, ISI, CRS और हॉलमार्क। सो बी ए स्मार्ट कंज्यूमर एंड रेज योर स्टैंडर्ड विद इंडियन स्टैंडर्ड्स।
4: 1990 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का महत्वपूर्ण दौर था, कैसेट का दौर था, हर जगह फिल्मी गीत सुनाई देते थे। इसी दौरान आनंद मिलिंद ने लगातार कई फिल्मों में संगीत दिया। उनकी धुनों में रोमांस था, मस्ती थी, परिवार था और भारतीय संगीत की सहज मिठास थी।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद

0: से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: तीन महीने में पैसे डबल,
3: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
2: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
4: और कल होगा भी नहीं।
2: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
5: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
2: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
4: और फास्ट रिटर्न से बच के
2: और फास्ट बॉलिंग से भी।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आज के कार्यक्रम में हमने जाना संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद के जीवन और उनके संगीत सफर को। उनकी धुनों ने 80 और 90 के दशक को एक अलग संगीत पहचान दी और उनके गीत आज भी श्रोताओं के दिलों में बसे हुए हैं। ग्यारह बजकर 30 मिनट हो रहे हैं, चलते हैं विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत सबरस की ओर। सुनते हैं पहला बंगाली लोकगीत मौसमी भौमिक की आवाज में।

के संगे पढ़ नहीं जा, पढ़ाई लिखाई किया भोजपुरी है सरकार समझिएगा, एक के संगे पढ़ नहीं जा, एक के संगे खेला नहीं, अरे खेला नहीं जा गोटिया।

0: चढ़ा सोना चांदी।
1: कप्तान की बीवी किसान की बीवी कहती है कप्तान की बीवी से कि तोहरे तिलकिया में, अरे तोहरे तिलकिया में चढ़ल सोना चांदी, अरे हमरो में, अरे हमरो में।

0: कहती है तोहरा बलमुआता, तोहरा बलमुआता देश के पहाड़ुआ,
1: देश के पहाड़ुआ, ओ देश के पहाड़ुआ,
0: तोहरा बलमुआता जिलवा के मालिक है। घमंड मत करो। कप्तान की बीवी कहती है किसान से कि हमारा बलमुआ तो देश के पहाड़वा। अरे तोहके मिलल मुरहा किसान हो, सखी हमरो किसान बा। ताना मारती है तो वो कहती है किसान की बीवी, अरे तोहरा बलमुआ तो जिलवा के मालिक,
1: जिलवा के मालिक हो, जिलवा के मालिक, जिलवा के मालिक हो, जिलवा के मालिक,
0: तोहरा बलमुआ तो जिला के मालिक,
1: जिलवा के मालिक हो, जिला के मालिक।
0: ए घमंड मत करो सखी, मैं पति की बुराई नहीं सुन सकती हूँ। तोहरा बलमुआ तो जिला के मालिक, अरे हमारो गौवा के, अरे हमारो गौवा के प्रधान हो, सखी हमारो।

0: बलिया बनारस बिहारी से सुनाली,
1: बिहारी से सुनाली, बिहारी से सुनाली।
0: तोहरे बलमुआ के किसान की बीवी समझाती है अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, अपने सखी को कि तोहरे बलमुआ का कितना बड़ाई करूं, चोर बदमाशन से जिलवा बचावे, हमरो सजनवा के कम मत जानी हा, गेहूं चना पैदा करके बॉर्डर तक पहुंचावे। कहती है, अरे तोरा सूरज, अरे तोहरा सूरज मोरा चांद हो सखी हमरो किसान।

0: बिहारी से सुनाली,
1: बिहारी से सुनाली, बिहारी से सुनाली,
0: बलिया बनारस बिहारी से सुनाली,
1: बिहारी से सुनाली, बिहारी से सुनाली।
0: हे हे सखी बलिया बनारस, अरे बिहारी से सुनाली, अरे तोरा मोरा ये कही समान हो सखी।

आप सुन रहे थे सबरस। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल देशभर में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में टेट की अनिवार्यता का विरोध कर रहे शिक्षकों की मांग पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में विभागीय परीक्षा लागू करने पर विचार कर रहे हैं और प्रदेश में 1 सितंबर से सभी श्रेणी के बिजली कनेक्शनों की ईकेवाईसी की प्रक्रिया शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल 27 अगस्त को देशभर में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के अलग अलग स्थानों पर मौजूद 8 लाख से अधिक युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम देश के प्रत्येक जिले के 2 प्रमुख महाविद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान 15 मिनट का एक समर्पित युवा संवाद सत्र होगा जिसके माध्यम से युवा अपने विचार आकांक्षाएं और नीतिगत सुझाव व्यक्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में टेट की अनिवार्यता का विरोध कर रहे शिक्षकों की मांग पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में विभागीय परीक्षा लागू करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का फैसला है। अभी सरकार मध्य प्रदेश जैसी विभागीय परीक्षा देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में 1 सितंबर से सभी श्रेणी के बिजली कनेक्शनों की ईकेवाईसी की प्रक्रिया शुरू होगी। ईकेवाईसी के लिए आधार कार्ड और बिजली बिल में दर्ज नाम का मिलान अनिवार्य होगा। उपभोक्ता घर बैठे मोर बिजली ऐप के जरिए अपनी ईकेवाईसी करा सकेंगे। इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने बताया कि मौसमी इन्फ्लुएंजा आमतौर पर हल्का होता है लेकिन बुजुर्गों, बच्चों और पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों में जटिलताएं होने का खतरा अधिक रहता है। उन्होंने ऐसे लोगों को अधिक सावधानी बरतने और इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण होने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की सलाह दी। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, बदन दर्द, थकान और कमजोरी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद ए मिलाद उन नबी और ओणम के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि यह अवसर दुनिया भर में एकता और खुशी को बढ़ावा देगा। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की उपस्थिति में कल 27 अगस्त को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में राज्यस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों, सामाजिक प्रभावों और व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

0: रक्षाबंधन पर्व के दौरान यात्रियों को सुविधा देने के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने दुर्ग रायगढ़ दुर्ग के बीच 27 से 29 अगस्त 2026 तक रक्षाबंधन पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल CGSSB द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत OT टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त को किया जाएगा। यह परीक्षा केवल एक पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी। इसके लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत बनाने की जुड़ी सिफारिशों पर सहमति जताई। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह छठी बैठक थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय
1: दिन के 12 बज रहे हैं, चलते हैं कार्यक्रम कला और कलाकार की ओर।
2: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा

कला और कलाकार सुन तो सप्पा भाई बहन मन के मैं रत्न करें से जुहार। भाई बहन मन, कला बल्लो ने कितने कला मन होए से, ये कला आई कविता पाठ कहानी और नाटक गीत गाओ तो कला, एक कला सपाय कला कलाकार भाई मन लगे रहे से ची मानतर। बड़े बड़े कवि कवि मन कहानी धंधा और नाटक ये सपाय के जान लो कलाकार भाई बहन मन तो दुई पैसा कमा बले सके और उनचो गांव पारा ने बले नाव होए से। असनी आजी चो कलाकारात रतन ध्यान आमचो भारत चो नाटक निर्देशक गुरु रहोत। एमन चो 23 जुलाई 2025 ने 77 बरख चो रहोत और एमन चो मृत्यु होली। रतन थियान चो जीवना ने नाटक चो खूबे योगदान रहे। एमन चो जन्म आए 20 जनवरी 1948 ने मणिपुर चो। कलाकार मन चो परिवार ने होन रहे। हुंचो बाप बले गुरु थियान तरुण कुमार शास्त्रीय मणिपुरी चो नृत्य गुरु रहोत। एमन चो शिक्षा पढ़े बले NSD नई दिल्ली ने 1974 ने ग्रेजुएट करला। रंगमंच चो पहिल चित्रकला ने बले एमन प्रसिद्ध रहोत। एमन चो कला ने खूबे योगदान रहे और भारत चो बाटले बले एमन की संस्था ले बले सम्मान करला और एमन के 1989 में कला ने एमन के पद्मश्री पुरस्कार बोले मिरली और कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार बाटले बोले पुरस्कार मिरली। सुमित्रा नंदन राम अवार्ड 2025 कला चो क्षेत्र बोले हुंचो रहे। भाई बहन मन, असनी कलाकार भाई मन चो कला दखून सीख तो राय और दूसर के बले सिखात राय। कला बल्लो ने कितले और कला बले होय से, गीत गाओ तो कला कविता कहनी आमचो नाटक आमचो भाई बहन मन लगे कहीं ना कहीं कला रहे सी ची। उनके मैं नी जाने बोलून ओगाय रतोर नुआ ओगाय रले तो नी होए। उनका जे आमचो जीवना ने के चलात का जे कहीं ना कहीं कला के सिकुन रले जीवना।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

0: भारतीय मानक ब्यूरो, स्टैंडर्ड है तो सही है।
1: सस्ता नहीं, सही चाहिए। क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, सेफ्टी में नो सरप्राइज। डोंट जस्ट बाय, रेज योर स्टैंडर्ड। अपनाओ इंडियन स्टैंडर्ड।
2: जी हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो भरोसा है, और इस भरोसे की पहचान है BIS क्वालिटी मार्क्स, ISI, CRS और हॉलमार्क। सो बी अ स्मार्ट कंज्यूमर एंड रेज योर स्टैंडर्ड विद इंडियन स्टैंडर्ड्स।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
4: दस्त होते ही घबराए नहीं, तुरंत बच्चे को ORS का घोल दें और डॉक्टर की सलाह से 14 दिनों तक जिंक की गोली जरूर दें।
5: खाना खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं। हमेशा उबला या सुरक्षित पानी पिएं और ढका हुआ ताज़ा भोजन ही खाएं। अगर बच्चे में कमजोरी, आंखें धसना या बार बार उल्टी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं।
4: याद रखें, झाड़ फूंक या अंधविश्वास में समय बर्बाद न करें। बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक या कोई दवा न दें। बासी या दूषित भोजन और अस्वच्छ पानी से बचें, और दस्त के दौरान तरल पदार्थ या स्तनपान कभी बंद न करें।
6: डायरिया से जंग, जागरूकता के संग।
4: ये अभियान 1 जुलाई से 31 अगस्त 2026 स्टॉप डायरिया कैंपेन आयोजित है।
7: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जगदलपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
8: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
11: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
12: प्रसार भारती लेकर आया है अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। यहां आपको मिलेंगे लाइव TV चैनल्स, मूवीज, सीरीज, नए नए शोज और वीडियो ऑन डिमांड। सुनिए लाइव रेडियो चैनल्स, देखिए मूवीज और सीरीज, और हां, साथ में गेमिंग का भी मजा आप ले सकते हैं। वेव्स पर शॉपिंग की सुविधा भी मिलेगी, और सबसे खास बात, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं। आप ढेर सारा

0: कंटेंट बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में पसंदीदा एंटरटेनमेंट और 12 से ज्यादा भाषाओं में कंटेंट, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो देर किस बात की, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप। वेव्स, नया कंटेंट, नया एंटरटेनमेंट और वो भी फ्री।
1: हाँ, तो नगद गोट के तो सुन लू। अदाए गीता से ए गीत के गावला से राज श्रीदेव और हुन मंचो संगवारी मन आले ए गीत के बले सुनू।

भाई बहन मन, ए गीत के तो सुन लू। ए गीत के गाउन रहो राजश्री देव और हुन मंचो संगवारी मन। तो भाई बहन मन, और बोले गीता से आले ए गीत के गावला से रामनाथ कश्यप और हुन मंचो संगवारी मन आले ए गीत के बोले सुनू।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12:30 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम घर द्वार।

0: स्टैंडर्ड है तो सही है।
1: हाँ तो ए नगद गोट के बोले सुन लू बहिन मन, ए भेटवार्ता आसे, ए भेटवार्ता चो बहिना त स्व सहायता समूह चो अध्यक्ष श्रीमती भगवती देवांगन और एमन संगे भेटघाट कर सो बलबीर सिंह कच आले एमन जो गोट बात के बोले सुनू।
2: सुन तो बहिन मन जसन की आपन मन घर द्वार कार्यक्रम ने सुनसास के आम्ही कई महिला स्व सहायता समूह बनान बाती काम करतो बहिन मन संग गोट बात करूँ से जे चोले हुन मन के बल्ले ने आर्थिक उन्नति होतो कारण ने हुन मन चो परिवार ने बल्ले ने खिनिक सुख है से मतलब सुविधा हो से तो असनी मैं फिर गोटो बहिन संग गोट बात करे से बहन तू सब ले आगे तोर नाम आरु गांव नाम संग
3: जुआ सबके जुआर
2: जुआर।
3: मर नाम श्रीमती भगवती देवांगन है, मर गांव नाम मंगना रहे, मर समूह ना प्रगति महिला स्व सहायता समूह है, मर समूह तानर में अध्यक्ष चाहे।
2: अच्छा तुम्हार तो समूह ने कतक लोग आ सजा?
3: अमर समूह ने 12 लोग आ चू।
2: अच्छा 12।
3: हाँ
2: अच्छा कतक दिन से नहला जाले बनाल बार?
3: अमर समूह तो 2016 जुड़ला 7 साल होइसी अच्छे।
2: अच्छा
3: हाँ
2: हाँ हाँ हाँ तो बल्ले ने ये समूह बनाए बाका जे तुम के कौन सांगला कौन सन बनाए बार समूह है बोलते?
3: तो आनी ले राउंड बलू आता है दीदी मनाए लाए चारा माँ काय काय बाटर आई दीदी मनाए लाए आम के समूह ने जुड़ ला आज कसन बलते पूछ लाए तो आम इना इना जुड़ लू आचे बल्लू तो कसन कसन आए सांगा बलते गलू गुनु काम पेर आए लग बस आए लाए पूछ लाए सांग लाए असन असन स्थिति है ये सब बलते बल लाए और पाचे आम ही समूह जुड़ लू।
2: अच्छा बोले ने शुरू ले 12 जन जुड़ लो?
3: हाँ हाँ शुरू ले 12 जन जुड़ लो है।
2: अच्छा है तन कहीं मतलब कहीं कागज वगैरह कहीं फार्म वगैरह भर के पड़ू है?
3: हाँ आधार कार्ड और फोटो कापी मांग लाए और इन्हें लाया मन।
2: अच्छा हाँ फिर शुरू ने तुम पैसा वगैरह बोल जमा कर लो?
3: हाँ हम 10-10 रुपया जमा कर लू, जमा करी गोटोक सील गेन लू पहले और इस समूह लोग 10-12 लोग ग्रुप ने गोटो का मी खाता खुलाए लू और आई तन 10-10 रुपया हफ्ता ने जमा करते रहूँ आई पैसा का मी बैंक ने कर जमा करूँ।
2: अच्छा हाँ हाँ फिर बाद में सरकार बाटले कहीं सहायता मिलला भी?
3: सरकार बाटले आरे पैसा बलुआ 15,000 आरे पैसा मिलला और सीआईएफ बलुआ 6 महीना बाद ने सीआईएफ पैसा मिलला और 1 साल बाद ने हम 1,00,000 पैसा दलू और 12 लोग आमी बैंक नामी अपना उठाई करी बैंक ने हमें पटाई सार लो।
2: अच्छा
3: हाँ
2: हाँ बोले ने सब ले पहल बोले ने काय काम की तुम्हें मूर कर ला साले?
3: पहले तो समूर काम चल ला पाचे 2020 ले आमी गोठान काम कर लू।
2: अच्छा समूह ने काय काम करते रहला?
3: समूह ने मैं पशु सखी काम करवाए
2: पशु सखी।
3: हाँ गाय बैला कुकड़ा चिमड़ा असनी काय मरनी बले हुआ है माथा बोलू हुआ ताय बले हुआ है गाय बैला के असनी गलगोटा ये सबर तो बड़े बड़े डॉक्टर मन के आग दे बार कारीगर असनी बीमार सीमार आए बलते और खुद छोटे छोटे बीमार होल तो मचीबल करवाए।
2: अच्छा हाँ। अच्छा तो ये पशु सखी काज बोलते हो तो के ट्रेनिंग धर के लाग सी?
3: हाँ पशु सखी काचे ट्रेनिंग धर के लागला हमके।
2: कहाँ?
3: बकावंड।
2: अच्छा बकावंड।
3: हाँ
2: अच्छा बोले कतक लोग कहते हैं ट्रेनिंग दिला जाले?
3: तो हर गांव ने तो आई लगे 27 पंचायत ने हर गांव ने 1,00,000 लेका पशु सखी बलुआ तो आती सब लोग जाई कर हम सीख लू और सीखी करी आई कर हम गांव ने भी कुकड़ा चिमड़ा के इंजेक्शन लगावा।
2: अच्छा हाँ हाँ तो है तन पूरा इंजेक्शन लगा बीती बोले सब सांग लगा
3: आओ कसन मार बारा है कसन कतक मार दवाई दर बारा है कसन मार बारा ये सब और सिखाए लाए तो सीखी करी आए लुआ और ये गांव ने आमी कर बुआ ची।
2: अच्छा तो हाँ तो मतलब दवाई वगैरह बोल कहीं है सरकार बाटले?
3: हाँ दवाई बोल सरकार बाटले देवन।
2: अच्छा बोले तुम के खुद घेनुक ना पड़े?
3: नहीं।
2: हाँ हाँ तो ये जैसन की पशु जानवर वगैरह बोले कहीं सर्वे वगैरह तुम कर सा की कहीं हाक दिले ने लगा ऐसा?
3: नहीं हर घर ने तो दिन भर तो कुकड़ा चिमड़ा तो दिन भर बुलुआ संजो ले हलुआ तो हर घर ने आमी तो जावा तो हर कुकड़ा के आमी इंजेक्शन लगावा छोटे बच्चा के अलग लगाए बराई और बड़े टाके अलग लगाए बराई।
2: अच्छा
3: हाँ
2: बोले सबका अलग अलग?
3: हाँ अलग अलग आवा।
2: तो बोले ने कहीं विशेष समय बल रही से आज का है जैसन की पशु टीकाकरण वगैरह बोले लगावत बोलवा तो असन बल तुम लगा हुआ
3: गाय बैल के?
2: हाँ
3: गाय बैल के तो बदमाश माँ बैल मन के लगाए ना हुए असनी कि नहीं सावधान माँ बैल मन के लगावा।
2: अच्छा
3: असनी बकरी और बैल मन के।
2: अच्छा हाँ हाँ बोलने

0: जोन तुम्हें मतलब इलाज करके सकास बोले
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ हाँ
0: बीतक तुम का। अच्छा ये तो अच्छा है बोले तू पशु सखी चो बोले काम कर सी ये बोले आए पशु सखी बोले काम कर
1: हाँ ये
0: सी।
1: भी बोल कर भी अच्छे।
0: अच्छा हाँ। तो बोले ने ये चुकाज कहीं जैसन की रजिस्टर वगैरह कहीं मेंटेन कर पड़ू है कहीं
1: नहीं कहीं ना लगे
0: कहीं ना लगे।
1: आओ।
0: अच्छा नहीं कहीं रिपोर्ट वगैरह कहीं
1: हाँ
0: बना
1: तो जैसा नामी तो गाँव ने कतक घर ने कतक कार घरे कतक कुकड़ा आचे ये
0: हाँ।
1: सब आम के जानकारी इधर के लागू आए। तो
0: अच्छा
1: वहाँ दीदी घरे अतक कुकड़ा आचे ताई दीदी घरे अतक कुकड़ा आचे गाँव ने ज अतक ले का आचे ते सब के आम के तो दर के पर लिख के लागू आए। और आगे सर मन के कोनी बोले पूछ ले आ के आम के सांग के लागू आए कि अमर गाँव ने ए दीदी घरे अतक कुकड़ा आचे गाँव ने अतक आम के अतक मुर्गी जनसंख्या आचे बोलते
0: अच्छा हाँ। तो हाँ हिसाब में तुम के दवाई बोले मेरे से आज बोले
1: आओ।
0: हाँ। तो ये जसन की पशुपालन विभाग ले कई ने कुकड़ी बकड़ा गाय भैंस पोस्तो योजना मन रही से आज ताय हाँ मन के बोल तुम्हें संग आज गाँव लोग से।
1: हाँ पारम भर बाराए बोलते सांगुआ।
0: अच्छा
1: तो आदिवासी लोग के तो 350 रुपया लागू आए और इसने पिछला वर्ग आए मन के 750 लागू आए इसने
0: अच्छा
1: कुकड़ा काज पारम भर बारो ले।
0: हाँ। तो अब तक कोनी के अमरा लासा से ऐसा नई योजना मंच लाभ को की दिला सास
1: हाँ दीदी मन के कुकड़ा लाभ
0: और
1: दिलाइलो
0: दिला
1: आचे। हाँ
0: अच्छा हाँ। तो ये तो अच्छा काम है ये तो तुझे बोले ने खुद चुकर तो भी थी पशु सखी आस मंतर जसन के अभी हम गोट बात करते रहलू तुम चु समूह
1: ये
0: ये समूह बोले अभी काय बनाए सार।
1: समूह ने आमर समूह ने भी तो खूबे काम आचे आमर गोठान ने तो चीज
0: हाँ
1: चलसी सबू। ये भी तो आमर समूह ने बकरी पालन करबू आचे 11 टा पशु विभाग ले आम के बकरी देलान ताके चरावा दिन भर संजो ले डापवा। और आची गोट के काम तो ना हो बलते भी रीपा बोलुआ रीपा काम आचे
0: अच्छा
1: तो आती आमी तो लाई ए अचार ए पेपर कप प्लेट और गिलास ये सब ले आमी दूसरा दुकान ले या सर ले को लग ले आम गेनी आनते रहूं।
0: हाँ
1: तो हाई बीती मशीन आम के केंद्र सरकार ले आम के
0: मिर्ला
1: मिरला आचे तो आई खुद आमी बनाए करी आम तो आमी बिकबू आचे दे।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ। भले भी मतलब चालू आसे
1: आओ
0: काम।
1: चालू आचे
0: अच्छा अच्छा इतलो अच्छा तुम काम कर सा तो ये बिक तो भी थे कहाँ बिकवा जले।
1: तो आटा मन के तो काय तो कोई बटन नुआ सब काय तो वही बटन नुआ तो गांव ने तो पेपर कप काय काय गांव ने शादी ब्याह बलुआ सट्टी गरे बल लागू आई लाई चना ये
0: हाँ
1: सब आई तन तने बिकवाऊ।
0: अच्छा तो बल हाँ खुद गोठान निचान के बात कर
1: हाओ हाओ
0: असन कहीं हाट वगैरह बोलने
1: नहीं नहीं को लगना नहीं हूँ।
0: ना नहीं अस
1: हाँ
0: अच्छा। तो जैसन की गोठान ने काम करवा पूरा 12 लोग संगे आसु आस की कहीं अलग अलग पारी बना हुआ जाए।
1: नहीं सब संगे आछुआ
0: अच्छा हाँ। बोले दिन ने कतक समय संगला साथ जाल कहीं कोनी दिन आए कि रोजे दिन आए।
1: नहीं डेली रोज जावा मामी सक्रिया 9 बजे टिफिन दरी कर जावा 5 बजे छुट्टी करवाऊ अति कवाऊ और दिन भर अति काम करवाऊ।
0: अच्छा बोला रोज दिन है।
1: हाँ रोज देना
0: अच्छा हाँ। ये तो अच्छा काम है जैसन की मशीन भी थी तु बोले दोना पत्तल गिलास कप वगैरह बोले बना तो ये का तो प्रशिक्षण जरूरी है।
1: हाँ तो प्रशिक्षण ना धरलू आम के से जोन सीखी रहे तो आय लाम के और असन के बटन के असन करवा रहा है असन ले असन करवा रहा है ये सब के सांग लाए आय तान ले पेराम बले खुद तिकरी रला दाए चालू कर लू और देख लू सीख लू सीखी करे भी खुदा में बनाए बुआ ची।
0: अच्छा
1: आओ
0: हाँ हाँ कसन असन बाहर ही नहीं गेला साज बोलू।
1: नहीं
0: अच्छा और कहीं दूसर काम ने कोनी बाहर ही दख के गेला सा।
1: बाहरे तो आमी रायपुर तक मैं 2 यार गलिया छे
0: अच्छा
1: चारा मा जाई रे तो उसने काय
0: अच्छा
1: काय काम कोन कोन जगह ने बनाए बात ये सबर
0: हाँ।
1: दक्के
0: अच्छा रायपुर ने काय दख ली जल तो।
1: रायपुर ने काय समूह लोग काय कर बात ये सब के दक के गलू असनी ये बेसांग भी अत्तु मैं तो दोना पत्थर ये सबर तो आई बाटले दखी आई कि रामी बले सब के करबू बलते आईलू और रामी ये के सीख लू और आम बल खुद करबू आचे।
0: अच्छा हाँ। तो ये तो अच्छा बल्ले ने कहा कि बल्ले कसन लागली रायपुर जाऊं दगबा के।
1: अच्छा लागला
0: अच्छा लागला
1: हाँ
0: हाँ मतलब मन ने तो कहीं आमे वाला
1: नहीं
0: सन नहीं असन आमे करूं दे असन तो हो लेती नहीं।
1: हाँ तो
0: हाँ
1: आमी बले दख लू दखिच कर दख ले तो आम के काम ना आता ये के खुद खरी कर दख बारा तेवे आम बल करबू की ना करबू बलते ये सोच लू और आम बल खुद कर लू और ये करबू आचे।
0: अच्छा हाँ। अच्छा देवंग ने तू इतलो अच्छा गोट के सांगलिस काम के बल सांगलिस वर्मी कंपोस्ट तू खुदे बोले ने कहा है कि पशु सखी बलियास जसन की ये जो लाभ बोलू भे पैसा कौड़ी वगैरह मिर लेने तू

0: जो 12 जन आसास तो कसन बाटा करू आशाले
1: असनी आजरी बरुआ तो कोन जाऊआ कोन के काम बल पड़ुआ ने को दुख आय सुख आय गाँव ने कोन गाँव गुड़ा बल जाऊआ आजरी अनुसार ने आजरी बरुआ आजरी अनुसार ने पाटा करुआ।
0: अच्छा
1: हाँ
0: ये तो अच्छा अच्छा ये सांग तू कितलो पढ़ा लिखा कितलो असन पढ़ ली
1: मैं आठवीं पढ़ लिया
0: आठवीं पढ़ लिया। हाँ। अच्छा तो ये तो अच्छा आठवीं बोले कुछ काम है ऐसे में पशु सखी बोलिया बोले ने समूह संगे बोलिया तू पशु सखी बोले तुझ दुठान काम हो
1: नहीं
0: तू दक पशु सखी बनलो बेराले और महिला स्व सहायता समूह ने जुड़लो बेराले घर परिवार का कहीं दखा दे से अच्छा उद्यम हिसाब ने का कसन लागे
1: नहीं पहले तो आमी के नी ना जायत रहूं गांव ने कुली बुती जाऊं तो दारू काचे जाऊं तो बरसात बेरा बेड़ा ने बुती जाऊं तो जोन दिन ले आमी 2016 ले आम जुड़लू आचे आई दिन ले बल्लासन मैं शुरुआत ले पशु सखीन काम कर भी अच्छा आई दिन ले के नी कुली बुती के नी ना जाऊं तो पाचे फिर 2020 ले फिर गोठान होयला गोठान होयबा के आमर आर्थिक सहायता अधिक अच्छा लागला कि घर द्वार बल खूब अच्छा होयला पिला जिला बल पढ़ा लिखा अच्छा करायलू अपना घर द्वार के बले आघर ले दूसरा बदललू एबे आम के बल खुद अच्छा लागसी अच्छे।
0: हाँ हाँ हाँ बल्ले ने कहा कि बल्ले ने खिने पैसा कोड़ी हिसाब ने खूब सुविधा होली
1: हाँ
0: हाँ
1: नोनी बले 12वीं तक पढ़ाई ली ऑनलाइन पढ़ाई होत रहे अरदाई मोबाइल ना रहे तार काज मोबाइल धर दे ली
0: हाँ हाँ
1: और फिर 12वीं पढ़ी कर छाड़ ला चाड़ बाग फिर एक ठन टेलर धर दे लिया चेबे नोनी टेलर करवाए काम।
0: अच्छा हाँ हाँ ये तो अच्छा है टेलर बोले गोटो हुनर आए समझो है कि नहीं बोले कहीं बोले काम करुन करुन उन असली खाली समय ने उन बल काम कर ले सके। अच्छा तुम जो समूह जो लोग एबे आगे बोले असन उन्नति बाढ़ती काज काय सोचला सास काय करा से
1: तो एबे आवरी हम काय करू हां तो आई आवरी बले कहीं काम होइले हावरी बले करबू।
0: अच्छा
1: हां
0: असन मन आसे विचार आसे बोलू
1: हां
0: हां तो आले दीदी तू इतलो अच्छा बोले तुम जो स्व सहायता समूह तू जो पशु सखी बनलो सफाय गोट के इतलो अच्छा नंगा सांगली साल खूब खूब जुआर
1: जुआर।
2: हाँ तो ये बहिन कितलो अच्छा गोट के सांगला गरे रोन रोन सपाय बुता के कर सोते मन पशुपालन बले और पशु सखी बले आते बहिन कितरो अच्छा गोट के सांगला अरे मन संगे भेटघाट करते रोत बलवीर सिंह कच्छ तो बहिन मन अदाय गीत आसे एक गीत के गावला से दिलीप कुमार पांडे और हुन मंचो संगवारी मन आले ए गीत के बले सुनू।

हाँ तो बहिन मन ए गीत के गाउन रो दिलीप कुमार पांडे और हम मंचो संगवारी मन। तो बहिन मन गीत सुन ले तो सुनुक तो भाई से ची मान तो फिर बोले गोटो गीतास्ता आले ये गीत के गावला से मेघनाथ पटनायक और हम मंचो संगवारी मन आले ये गीत के बोले सुनू।

हाँ तो बहिन मन, ए गीत के तो सुन लू। ए गीत के गाउन रोत मेघनाथ पटनायक अरुण मंचो संगवारी मन। तो बहिन मन, गीत गोविंद तो सुन लू। अदाय मचो जात समय आवल होय से, घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सब पाए। बहिन दीदी मन के मैं रत्नी करें से जुहार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थान बना चुका है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में परिवर्तन संरचनात्मक है और तेजी से होते शहरीकरण, मध्यम वर्गीय का स्तर बढ़ने और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का इसमें अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नए अवसर सृजित कर रही है। वित्त मंत्री ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं में भारत के डिजिटल तंत्र का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत यह कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के दो कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जोड़ने का अवसर मिलेगा। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की आगरा स्थित एडीआरडीई द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उच्च अधिकारियों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पायलटों और चालक दल के सदस्यों के शरीर में मनोसक्रिय पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने वाला मोका डोप टेस्ट सिस्टम और नागर विमानन आवश्यकताओं CAR में जरूरी बदलावों पर चर्चा हो रही है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक और एयरलाइन ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। अब तक इसके 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस संक्रमण से होने वाली बीमारी और मौतों की निगरानी कर रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। नॉर्वे में कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की जा रही ज्यादति के खिलाफ प्रदर्शन किया। नॉर्वे की संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता और हिंसा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAEC के साथ एकजुटता दिखाते हुए इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को खत्म करने की मांग की। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. Harish ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया। भारत ने नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में किए गए उल्लेखों का इन लोखे को खारिज कर दिया है। भारत ने इन्हें राजनीति से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण बताया। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ICERD के तहत भारत की 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद समिति की रिपोर्ट को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इसमें रचनात्मक ढंग से भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए भारत और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल यूक्रेन के 35वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूक्रेन के नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले में चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं।

0: श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। 1:05 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम बेड़ा खाड़ा चौगोट।
2: भेंडी के दा दीदी मन आमी सफाई जानू से एक ओटोक नगदी फसल होय से। भेंडी ने कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी और सी जिनेस मन रहे से। यथा प्रोटीन चो मात्रा 1.9% रहे से। असन तो भेंडी के सफाई बरंचो माटी ने कमोक सकूं, मांतर बालू बीती दुई माटिया भूं जहाँ जीवांश जिनेस नंगत मात्रा रहो और पानी निकर तो ठान नंगत रहो, असन भूं भेंडी का जे खुब्बे नंगत रहे से। सबले पहल भूई के दुई तिन्हार नगद जोपून लगड़ा जोपलो पीछे मारतो रहे, असन ने माटी भर भरा हो से। एचो पाछे 4 मीटर लाम और 4 मीटर ओसार कियारी और संग संगे पानी झपातो नाली मन बनाऊन देतो रहे। भेंडी चो नगद उपजन काजे 2.5 एकड़ हिसाब ने गोबर खत 200 ले 250 कुंटल, नत्रजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटाश 50 किलोग्राम लगाओ लागे दे। घाम दिना चो फसल ने बुनतो पूरे गोबर खत नाले कंपोस्ट फास्फोरस और पोटास जो सफाई मात्रा संगे नत्रजन चो आधा मात्रा के देवक लागे दे। नत्रजन चो बाचलो मात्रा के बुनलो 30 दिन पाछे देवन देतो रहे। नगद उपजन काजे आम के नगद किस्म चो बीज लागे दे। ए नगद किस्म मन हो से एक मैं सांगे से। पहले गोटो पूसा सावनी बोलूँ से, एके घाम और वर्षा दोनों समयाने मंडौक सकूं। घाम दिना 40 ले 45 दिन ने और वर्षा समयाने 60 ले 65 दिन पाछे बूटा ने फर धरुक मुरिया से। 2.5 एकड़ ने 100 कुंटल उपजन मेरे से। दूसरा वैसे पूसा मखमली, एक किस्म पूसा सावनी ले खूबे उपजन दे से। उसने गोटो किस्म वैसे सलेक्शन एक, सलेक्शन दुई, हर भजन एके सलेक्शन 6 और 2 बल बलू से, IIHR 20, पंजाब नंबर 13, पंजाब पद्मिनी, कोयम्बटूर 1, वैशाली वधु, PNB 57, परकिंस लॉन्ग ग्रीन, चयन 7, चयन 39, 25, 29 और चयन 57, 13, 35। ये सफाई नगद किसी मन होए से। भेंडी चो घाम दिना फसल के फरवरी मार्च महीना ने बुनुक मंडाऊक लागे दे। घाम दिना चो फसल काजे 18 से 20 किलोग्राम 2.5 एकड़ हिसाब ने बीज लागे दे और गोटोक बीजा ले दूसर बीजा के 30 सेंटीमीटर लाफी मंडा तो रहे। वर्षा बीती फसल ने के जून जुलाई महीना ने मंडा तो रहे। एचो काजे 10 ले 12 किलोग्राम 2.5 एकड़ हिसाब ने बीज लागे दे। बरककार ने सरलगा भेंडी फरकाजे दुई हार मंडालो फसल ने 8 ले 10 दिन चो अंतर ने मंडातो रहे। बीज के 2.5 ले 3.5 सेंटीमीटर चुखाले भूई ने मंडातो रहे। बीज चो मात्रा हो तो क्षमता 2 बरक तक रहे से। एक आजे 2 बरक पाछे जो बीज के नी मंडातो रहे। बीज के मंडातो पूरे 18 ले 24 घंटा पानी ने भिजाउन संगातो रहे और ब्रासिकाल दवाई 3 ग्राम गोठो किलोग्राम बीज हिसाब ने उपचार करतो रहे। भूई ने नमी दखून बीज मंडा तो तुरते खिंडिक पानी झपाउन देतो रहे। एचो ने बीजा भूई ने झप के जमे दे। घाम दिना फसल के 5 ले 6 दिन भीतर ने पानी झपाते रहतो रहे। लाटा बूटा के समय समय ने मिंजाते रहतो रहे और कोड़का कुसला करके रहतो रहे। भेंडी फसल का जे बासालीन दवाई खूबे नगत रहे से। एचो 1.5 ले 2 लीटर मात्रा 2.5 एकड़ हिसाब ने घोर मनातो रहे और बुन तो 4 दिन पूरे भूई ने छिचुन देते रहे। मंडालो 45 दिन पाछे भेंडी फर टूटा तो असन हो से। 2 दिन चो अंतर ने फर टूटाते रहते रहे। घाम दिना चो फसल ने 2.5 एकड़ ने 70 कुंटल और वर्षा फसल ने 100 कुंटल हो सके। फसल ले बीज उपजन करते रहे बल्लो।

0: 10 ले 12 क्विंटल अड़ी एकड़ ने मी रुक सके।
1: आप सुन रहे थे कृषि सामये की बेड़ा खाड़ा चौगोट। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी फिल्मी गीतों का श्रोता सुमन। तो आज के पहले फरमाइश करता है तालुका नेवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, माया, शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट, हरिभाऊ बिड़वे, महादेव घाट अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति रियांश, भाटापारा दतरेंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा, ढोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं देव शक्कर तामुरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, ग्राम बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश कुमारी, अंजलि सारवा, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू, जीएस रामगढ़िया, मलोट कैंप पंजाब से हैं सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी, तालुका उमरखेड़ से हैं गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक, प्रियंका, लक्ष्मी, स्वरित, उत्तम जामधाड़े, साथ ही लोहंडीगुड़ा बस्तर से हैं चंदन नाग, हरीश नाग, उदय नाग, बालसिंह नाग, भीमाराम सोरी, दरभा बस्तर से हैं रामधर कश्यप, रामधर बघेल, सोनू राम बघेल, उदय राम ठाकुर, मोतीराम मौर्य, जलन कश्यप, महाराष्ट्र हिंगोली से हैं सहाजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, पाठरकवड़ा से है अनिल बुराड़े, उषा बुराड़े, प्राची, अनुश्री, धनश्री, बलौदा अक्कलतरा से हैं दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। आइए सुनते हैं इन सब की फरमाइश की गई गीत। फिल्म है क्रिमिनल, इस गीत को गाया है कुमार सानू ने, गीतकार है इंदिवर और संगीत है एम एम करीम का।

0: भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड है तो सही है।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: सस्ता नहीं, सही चाहिए। क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, सेफ्टी में नो सरप्राइज। डोंट जस्ट बाय, रेज योर स्टैंडर्ड, अपनाओ इंडियन स्टैंडर्ड।
3: जी हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो भरोसा है, और इस भरोसे की पहचान है BIS क्वालिटी मार्क्स, ISI, CRS और हॉलमार्क। सो बी अ स्मार्ट कंज्यूमर एंड रेज योर स्टैंडर्ड विद इंडियन स्टैंडर्ड्स।
4: अगले फरमाइश करता है बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, JS नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। चंदन नगर सतारा से हैं सतीश वाघमारे, अतीश, स्वाति, वर्षा, श्रमण, श्रीमेण। वारणाशाहपुर कोल्हापुर से हैं विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता, अनिकेत, माय चौहान। सपना संगीता रोड इंदौर से हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया। रामगंज खड़वा से हैं विजय मोहबिया, कविता मोहबिया, संजय मोहबिया, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज, भयू दादा। साथ ही शिवपुरम कॉलोनी खड़वा से हैं VS मोहबिया, कमला मोहबिया। बंगला माटिया बालों से हैं शिव कुमार अंगारे, अंजलि, त्र्यंबिका, लीना, अंशु, आशुतोष अंगारे। कृष्णा नगर टीवी टावर सेमिनार हिल्स नागपुर से हैं नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई, राहुल। लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी, ईशिका, तेजल यादव। हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से हैं रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सनी, कोमल यादव। ग्राम बुड़गहन से हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खड़वा से हैं अब्दुल गफर डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर। आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद का गीत। फिल्म है जो जीता वही सिकंदर। इस गीत को गाया है उदित नारायण ने, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है जतिन ललित का।

0: भारतीय मानक ब्यूरो, स्टैंडर्ड है तो सही है।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
2: अगले फरमाइश करता है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। तीवरता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से हैं श्रीमती जया मरकाम जयंती मरकाम, सहेद्रीबाई मरकाम, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, गिरजाबाई। दतरेंगी से हैं विश्राम यदु, पार्वती, प्रतिमा, रीना और लक्ष्मीना। शीतलानगर दुर्ग से हैं शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर। जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। महामाया पारा ग्राम दरचूरा से हैं फिरंता साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, शालिया शोएब खान, मुमताबा खान, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सिमंदर पार्क वीरमगाम से हैं अजित, प्रेमिला, भावेश, सन्नी, हेतल, कृष्णा, जैमिन भावसार। साथी हैं गणेश पेठ पाथरडी महाराष्ट्र से अंबादास शिंडे, श्रीमती संगीता शिंडे, अमोल अमृत और सुवर्णा शिंडे। नेहरू वार्ड भाटापारा से है प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू। सुंदरपारा रोहासी से है डगेश्वर राम साहू, नूतन कुमार साहू, गौरव कुमार साहू। साथी है मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार और सागर कुमार। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से है राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से है विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। साथ ही नवागढ़ कटई से है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा। आइए सुनते हैं इन सब की पसंद का ये गीत। फिल्म है राज। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। गीतकार है समीर, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: भारतीय मानक ब्यूरो, स्टैंडर्ड है तो सही है।
1: सस्ता नहीं, सही चाहिए। क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, सेफ्टी में नो सरप्राइज। डोंट जस्ट बाय, रेज योर स्टैंडर्ड। अपनाओ इंडियन स्टैंडर्ड।
2: जी हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो भरोसा है, और इस भरोसे की पहचान है BIS क्वालिटी मार्क्स, ISI, CRS और हॉलमार्क। सो बी अ स्मार्ट कंज्यूमर एंड रेज योर स्टैंडर्ड विद इंडियन स्टैंडर्ड्स।
3: अगली फरमाइश हुई है बाबा पट्टी बलिया से। फरमाइशकर्ताओं के नाम हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार।

कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से हैं, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, साथ ही हैं शेरपुर गाजीपुर से हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, घंटाघर चौक खड़वा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से हैं मास्टर विट्ठल सुरेशे, सुषमा सुरोशे, परिधि निधिश मायरा, डोबीवली मुंबई से हैं भावना यादव, अधीश यादव, स्मित गोरे, श्रियांश गोरे, आदर्श नगर मलौट से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइनी शर्मा, गोल बाजार बक्सर से हैं श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, बोरसहरा नैला से हैं प्रमोद कुमार साहू, भीमा, वैभवी, विनोद, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू, कुलम रोड हरगोविंद नगर पंजाब से हैं सुरिंदर संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, प्रीतिशा संधू, सुरेश बेबी, शिखा संधू और मैक्स, कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता, गौरीनगर इंदौर से हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले, गोरबा भिलाईगढ़ से हैं देवलाल कर्ष, कामनी कर्ष, यश कर्ष, गुमला झारखंड से हैं एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से हैं प्रकाश बोरगावंकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगावंकर, महाराष्ट्र बीड शहर से हैं प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल। आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद का ये गीत। फिल्म है कृष। इस गीत को स्वर दिया है उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने। गीतकार हैं नासिर फराज, संगीतकार हैं राकेश रोशन।

0: भारतीय मानक ब्यूरो, स्टैंडर्ड है तो सही है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के

0: बद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अगले फरमाइश करता है पीपर पारा पालचुवा मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन, वंशिका। अनारकली बाजार जगराव से है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष, बेबी गेवी, भाई सूजा पाठक। रहमानिया मोहल्ला बिहार से है तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफ अत जहानाज, नुजहत जहानाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा। साथ ही नसवाला चौक मलकापुर से हैं संजय पाटिल, सौभाग्यवती उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निर्वृत्ति शीरसागर, सतीश सराफ, जगदीश तांबट। भाटापारा से हैं दानसिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत, नीरज रावत। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से हैं चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर। घाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से हैं कौशल किशोर, संगीता, हर्षित और वैभव। ग्राम बेहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही इशिका वर्मा, अंजलि श्वेता वर्मा। बेरडी से है राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे। मोती गार्डन भाटापारा से है मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू झेरिया, युग कुमार झेरिया। पुणे से है प्रियंका आर्या, पंकज वाड़ोदे। जरूर वरूण से हैं बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चर्पी, चंद्रप्रभा वाड़ोदे। साथ ही सरगुजा मेनपाट से हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से हैं परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम। साथ ही जेल रोड मथुरा से हैं वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद का ये गीत। फिल्म है खिलाड़ी। इस गीत को स्वर दिया है अभिजीत और अलका याग्निक ने। गीतकार हैं अनवर सागर, संगीतकार हैं जतिन ललित।

0: भारतीय मानक ब्यूरो, स्टैंडर्ड है तो सही है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार

0: आर का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अगली फरमाइश है खरगोन से। फरमाइशकर्ता के नाम है ध्रुवा, सोनवणे, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा, शुभम। कुंभार गली कोलगांव से है पांडुचंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष, पांडुरंग। ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से है जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, रिया, रेणु, रोनिका। साथ ही मोरटक्का माफी जिला खंडवा से हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ललित, शुभम, भावना, आदित्य, मानस। आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद का ये गीत जो कि है फिल्म साजन से। गीत को गाया है SP बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक ने। गीतकार हैं समीर, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता सुमन। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंग्रेजी, क्रमशः हिंदी में, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिडडे न्यूज़।

0: धार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
1: इंडिया टुडे स्टैंड्स एज द फास्टेस्ट।
2: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
0: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
1: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन।
2: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
1: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
0: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
4: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
5: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने

0: सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सिलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEPG और AICE PhD 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दास गुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरनमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और

0: पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जम्परों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अभी 2:23 हो रहे हैं। अभी आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
1: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जाने में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
1: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह स्तर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं। और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
1: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
1: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गाँव है
2: जी।
1: लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ न शोर है, न ऊंची ऊंची इमारतें और न शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
2: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गाँव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
1: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी, कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
2: अजीत जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गाँवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है। यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
1: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ विशेषकर हनले गाँव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है
2: जी।
1: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
2: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का

0: अध्ययन करते हैं।
1: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब हंडले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
0: जी जी जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हंडले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हंडले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
1: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
0: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हंडले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
0: जी,
1: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
0: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं, हंडले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
1: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
0: जी,
1: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं, लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
0: जी,
1: हंडले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है। बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
0: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हंडले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
1: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है, तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
0: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: आहा, क्या बात है।
3: मैम।
5: हाँ बेटी।
3: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
3: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
3: जी पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
4: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
4: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
4: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
4: मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
6: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
7: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
5: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
4: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
5: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
5: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
7: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
5: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
4: सॉइल इरोजन,
5: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
5: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
4: जी मैम।
3: यस मैम।
5: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
5: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
7: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
5: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं

0: यानी पशुओं के बारे में। लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी दोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
5: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
6: जी हाँ।
5: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
7: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
6: हाँ, उपाय बताइए।
5: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
8: ग्राम सभा?
7: ठीक है।
8: हाँ हाँ, ठीक है।
5: समझे? और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
6: हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है।
5: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
9: जी, हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
10: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
5: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
11: वो कैसे?
12: क्या गड्ढा बनाना है?
13: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है।
7: फिर इसकी क्या जरूरत है?
11: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
5: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
7: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ।
13: हाँ हाँ, हमें भी बताओ।
5: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
7: सिंचाई टैंक?
5: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े। इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
12: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
6: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के

काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं। अब हम मीडियम वेव के कार्यक्रम यहां समाप्त कर विविध भारती के कार्यक्रम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निरंतर प्रसारित कर रहे हैं। आप मीडियम वेव के प्रसारण सांध्यकालीन सभा शाम 5 बजे से पुनः सुन सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।